गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सब ताए हुए सहाय, दसा पातशाहिया दी जोत तन तन तन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार ता ध्यान तरके, खालस जी बोलो जी सतनाम वाहे गुरु। पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादियां चालिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया, जिना नाम जपिया वन शकिया, देख चलाए देख वाहे देख के।

सिंगणिया ने तरम हे सी स्टिठे बन बन कटाए कोपरिया लुहाइया चरकरिया तेचरे आरिया नाल चराई गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया तरम नाही हारिया सिखे कैसा स्वासा नाल भाई तिना दी कमाए दात्या अंतर के बोलो जी सतनाम सारिया तकता सरबत गुरुद्वारिया दात्या अंतर के बोलो जी सतनाम व्रत में सरबत खालस जी की अरदास है जी सरबत खालस जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय कालसी जी के बोल बाले बोलो जी सतनाम सिखानु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसा दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इश्नान चौंकियां झुंडे पुंगे जुगो जुग अटल।

एकोंकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्भयकार मुद अजुनी सेवं गुरु प्रसाद जप आज सच युगात सच हे भी सच नानक हो सी भी सच सुच सुच न हो वही जे सुचि लखवार चुपे चुप न हो वही जे लाए रहा लिफ्तार भुकिया भुक न उतरी जे वन न पुरिया वार सेसिया न पलक होए तैक न छले नाल किव सचियारा होइए किव गुरे तुते पाल हुकम रजाई छरना नानक लिखिया नाल हुकमि होवा न कर हुकम न किया जाए हुकमि होवन जी हुकम ले वरियाई हुकमि उत्तम नीच हुकमे दुख सुख पाए एक न हुकमि बख्शीश हुकमे सदा बबाए हुकमे अंद सबको बहर हुकम न कोय नानक हुकमे जे बुझे त होवे कह न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को तन निशान गावे को गुण वरियाय अचार गावे को विख्या विकम विचार गावे को सच शर तंके गावे को जीले फिर दे गावे को चापे दी से दूर गावे को वह हर हदूर कथ न कथ न आवे तोत कत कत कति कुति कुत कुत देदा दे ले दे तत पाए जुगा जुगंत खाई हुकम छलाए राव नानक विसे वे परवाव सच सैव सच नाय वाख्या वाव अपार आंखे मंगे दे दे दास करे दातार फिर के अगर रखिए किति से दरबार मौके बोलन बोलिए जिस सुंदर प्यार अमृत वेला सचनाओ वरियाई विचार करमिया वे कपरा नदरी मुख द्वार नानक वे जानिए आपे सचियार तप न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे भी आतिन पाया मान नानक गावे गुण निदान गावे सुने मरवा के भाव दुपर हर सुखा ले जाए गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग गुरुमुख वे रसमाय गुरीश्वर गु गौर परमा गुरु कृपा की माए जय हो जाना आखा नाही कहना कतना जाए गुरे के दे बुझाए सब न जिया कह दाता सोमे विसर न जाए तीर्थ ना भजे तिस पावा विम्बन के नाय करी जेती सिद्ध पाई बेका विंके में मिल लई मध विच करन जमर महान जय गुर की एक सुनी गुरे के दे बुझाए सब न जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए जे चुप चारे आर जा होर न सुनी होए नाव खन्न विच शानिये नाव सले सब कोए चंगा नाव रकाए के जस किर जगले जे जिस नर न आवे ता पर न पूछे के किता अंदर किता का दोषी दोष त्रे नानक ने गुं गुं करे गुणवंतिया गुंदे तेहा कोय न सुझे जे तिस गुण कोय करे सुनिए सिर पेर सुनात सुनिए तर तलकस सुनिए ति पलो पाताल सुनिए तो न सके कल नानक भगता सदा विगा सुनिए दुपाप काना सुनिए ईश्वर वर्मा इंद सुनिए मो सलामंद सुनिए जो जुगत तन विद सुनिए सत सिमृत विद नानक भगता सदा विगा सुनिए दुपाप काना सुनिए सत्संतो ज्ञान सुनिए असत का इश्नान सुनिए पर पावे मन सुनिए लगे सहेष्टियन नानक भगता सदा विगा सुनिए दुपाप काना मने कि सुनिए सरागना के गा सुनिए शिपी पतिशाव सुने अंधे पावे राव सुनिए हाथों वे असकाव नानक भगता सदा विगा सुनिए दुपाप काना माने की कत कहे न जाए जे को कहे कछे पछताए राकर खान नल कनहार माने कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मंकोए माने मा माने सुधर

सदादान अंतर नाम समाले जीजंत जिना जिन्ने प्रतिपाले मुक्त प्रदात तिन्न को पाई हर के नाम रते लिवलाई गुरु सेवते हर नाम धन पावे अंतर प्रगास हर नाम